फ्रेश आदि खुला खबर को साथ में हिमाल सुनचांदी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक गरगहना ग्यारेन्टी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनचांदी पसल वालिंग बजार सैंगजा।

0: को सर्वाधिक बिक्री होने बजाज मोटरसाइकिल को अपग्रेड में पाने हो अनबीटेबल कैश डिस्काउंट अनि अनबीटेबल एक्स्ट्रा वैल्यूएशन सजिलो 36 महीना को ईएमआई मा साथ ही फ्री एक्सेसरीज उपलब्ध छ।
1: मेला हुने मिति यही साउन 10 गते देखि 16 गते सम्म। स्थान गल्याङतिन सिन्नेपानी। सम्पर्क मोबाइल 9846096248 र 9251220199।

0: पहले हम लोग नौ बजे छ
1: इस समय को साथ में जेतु सुनचादी पसल भूषाल पेट्रोल पंप नजिक रहेको डिपार्टमेंट स्टोर संग जोड़ पांच गरेता कुना को लाइन जैसी पंद्रह जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने ठाउँ
0: रेडियो आदि खोला 105.4
2: रेडियो आदि खोला 105.4

0: पहले हम लोग अनिमा एक बजे तक
1: इस समय को साथ में जेतु सुनचादी पसल भूसाल पेट्रोल पंप नजिक रहेको डिपार्टमेंट स्टोर संग जोड़िएको पांच गरेता कुना को लाइन जैसी पंद्रह जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने ठाउँ
0: सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो आदि खोला 105.4 आफ्नो ख्याल।

एस आदि खोला खबर को साथ में हिमाल सुनसादी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक गरगहना ग्यारेन्टी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनसादी पसल वालिंग बजार सेंजा।